कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है। उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए बस दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03265 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03262 66 11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर की जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई दे मिले। मैं हूं आपका खिदमत गुजार बीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। तो जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है सुनते ही रहना। अगला भजन जो आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, हम आपको ले चलते हैं ये खास सुंदर और सुंदर भजन की ओर जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा माता जी का भजन आज शुक्रवार की भजन यात्रा के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुंदर माता जी का भजन बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए। चलिए प्रोग्राम में एक और सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए अभी बाहर हम आपको ले चलते हैं शुक्ला की आवाज में ये सुंदर भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अब की बार उदित नारायण की आवाज में एक सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में शुक्ला की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अब की बार उदित नारायण की आवाज में एक सुंदर सा माता जी का भजन।

की सेवा में ये पेश की गई रेडियो SBS के जरिए भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना हर सुबह आप सभी सुध वालों की सेवा में ये खास प्रोग्राम पेश किया जा रहा है हमारी सभी और सभी भक्त प्राणियों के लिए। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

काफी सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों चले प्रोग्राम में श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उसके बाद आरती भजन पेश किया जाएगी।

विवेक की आवाज में ये सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: आरती भजन बस्परों का भी पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, यहाँ तक भजन यात्रा प्रोग्राम आज शुक्रवार का दिन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt

रेडियो SBS की जरिए शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। कुमार सानू एन अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल।

देखिए आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले मिलकर अरिजीत सिंह की आवाज

रेडियो एस बी एस के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज सर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो एस बी एस के जरिए जो पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू जी की आवाज़ में।

माइटी मुकेश के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं।

में फिल्म बसेरा, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में आशा और उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चले मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है जेवल थीफ।

0: हर रोते को हंसा हंसा के गाए जा तू। जब तक है दम मतवाले हम मतवाले तुम।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं।

मन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

रेडियो SBS की जरिए खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई। आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम भी रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज शुक्रवार का दिन 28 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है कि कल कुछ देशों में रक्षाबंधन बस मनाया गया है, लेकिन आज भी कुछ देशों में रक्षाबंधन बड़ी ही धूम

आज नखमे पेश किया जा रहा है रक्षाबंधन के खास उपलक्ष पर, इसलिए कि आज भी कुछ देशों में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, तो इसी खास उपलक्ष पर ये गाना

रक्षाबंधन के मौके पर मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गए। आप सभी को एक शुभ रक्षाबंधन बस पेश किया जा रहा है। कल कुछ देशों में बस लोगों ने मनाए हैं, भाई बहन मिलकर मनाए हैं, और आज भी कुछ देशों में भाई बहन मिलकर रक्षाबंधन को मना रहे हैं। तो इसी खास उपलक्ष्य पर ये गाना आपकी बार पेश किया जा रहा है।

रक्षाबंधन के मौके पर ये गाना आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में पेश की गई। आज जबकि शुक्रवार का दिन है, 28 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, तो रक्षाबंधन के मौके पर ये गाना बस पेश की गई। चले एक और गाना पेश किया जा रहा है रक्षाबंधन के मौके पर। कल बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार कुछ देशों में भाई बहन मिलकर रक्षाबंधन मनाए हैं और आज शुक्रवार कुछ देशों में रक्षाबंधन भी भाई और बहन बड़ी ही धूमधाम के साथ बस मनाने वाले हैं। तो चले अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। गाना के बाद प्रोग्राम में खबरें पेश होगा और खबरें के बाद पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है आगे तक पेश किया जाएगी।

महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आयशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। अब की बार फिल्म घराना का गीत आप सुनते ही।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी महेंद्र कपूर की आवाज में।

बशरी मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना है पेश की गई आज की प्रोग्राम में। चले एक बार फिर से मोहम्मद रफी एंड लता की ओर हम आपको ले चलते हैं। दिल तेरा दीवाना फिल्म का नाम, मुझे कितना प्यार है तुमसे, फ्रॉम द मूवी दिल तेरा दीवाना, मोहम्मद रफी।

ताजी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में दिल तेरा दीवाना फिल्म का नाम था। उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार मुखी सौलता होगा प्रोग्राम में। धरती कहे पुकार की फिल्म

मुखी सौर लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आंसर उम्मीद है गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656566। किशोर एंड लता प्रोग्राम में होगा।

तुमको कितना प्यार है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी एंड लता की ओर हम आपको ले चलते हैं। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। और अब की बार मोहम्मद रफी एंड लता।

साथ रहे मोहम्मद रफी और खास तौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है आशा भोसले प्रोग्राम में होगा और आशा जी की आवाज में ये गाना।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, जाने चमन शोला बदन।

मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये गाना पेश की गए, जाने चमन शोला बदन। सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम शहडोल ट्रैक से बस पेश किया जा रहा है और इस वक्त पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: परमेश्वर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: प्यार मरता नहीं दम निकलने से
0: चले अपनी बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: En nu reclame, het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम
2: हॉलैंड। आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

अल का जीती आवाज में ये गाना बस पांच की प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। सुन वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। आपकी तमाम फरमाइशें तमाम खबरें जो है सस्ती दामों में रेडियो SBS के जरिए बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए अनुराधा पोटवाल एन कुमार।

GKR Bas Mim. Sudvalu Radio SBS ka website radiosbs.nl usi website ki zariye apna mobile telephone tablet iPad computer ki zariye hamara program ko aap sun sakte hain aur sabhi internet radio ki zariye usi Sudvalu bas hamesha rozana Radio SBS ka program ko follow kar rahe hain अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में ये प्रोग्राम जो आप सभी के लिए हमेशा पेश किया जा रहा है हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो से।

रेडियो SBS के जरिए जावेद अली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपके बार जो पेश किया जा रहा है

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं, तो चले प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है अलका एंड उदित नारायण की आवाज में।

ये प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की सीरीज क्षेत्र तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। बाबू सुप्रियो प्रोग्राम में

0: काबुल सुब्रियो की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी।

सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों, आपकी फरमाइश से हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में, सभी काम काज किया जा रहा है। आप सभी का हर एक काम सस्ती दामों में बस किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीफोन नंबर है 030 265 65 65 60।

साधना सरगम की आवाज में ग्यारह बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सितारों का सितारा रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, अभिजीत और खासतौर पर अलका जी की आवाज में। इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म का नाम है।

पेश की गए अभिजीत और अलका जी की आवाज में खास गाना जो अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई फिल्म का नाम था इंटरनेशनल खिलाड़ी। उसी फिल्म का ये खूबसूरत गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चलिए आज की प्रोग्राम में जावेद अली और श्रेया जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है खूबसूरत नख में। आज की प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना।

गाना जो पेश की गए जावेद अली एंड श्रेया घोषाल की आवाज में, गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार के नंबर पर बहुत सी सुनने वालों बस अपना अपना रिएक्शंस देते रहते हैं। मोहम्मद इरफान और साथियों के आवाज में ये गाना

जाने भी दे गाना बस प्रोग्राम में सोनू निगम और सुनिधि चौहान के आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई जाने भी दे गाना जो प्रोग्राम में पेश हुआ है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। शान और साथियों की आवाज में ये गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में शान और साथियों के आवास में प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। आज के प्रोग्राम में खूबसूरत नगमे बस पेश किया जा रहा है कुमार सानू एंड साधना सरगम, इश्क में जीना इश्क में मरना फिल्म का नाम।

आवास में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में शैलेंद्र सिंह के आवास में गाना पेश किया जा रहा है। शैलेंद्र सिंह के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना। जमाने को दिखाना है फिल्म का नाम।

शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई, जमाने को दिखाना है फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL चले मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना सुन वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामों काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में हर एक कामों काज किया जा रहा है। सभी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए टेलीफोन नंबर जो 24 आप सभी के लिए बार एक बार होता है 030-265-65-60। आशा भोसले प्रोग्राम में

नाइटिंगेल ऑफ एशिया आशा भोसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शहर उत्तराखंड हॉलैंडी से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है मुकेश एंड शमशाद बेगम प्रोग्राम में। मैं भौरा तू है फूल

मुकेश और शमशाद बेगम के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मैं भौरा तू है फूल। खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए हैं। मोहम्मद रफी एन आशा भोसले पुरानी नख में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए गाना आज की प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, आशा भोसले की आवाज में। अब की बार ये गाना उस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गए। आशा भोसले के बाद चले प्रोग्राम में इस खास पुरानी नखमे की प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं लता जी की ओर, और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है, मैंने बुलाया और तुम आए। लता के बाद अब की बार मुकेश और आशा जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। दमाई थी मुकेश और आशा जी की आवाज में ये गाना।

सुन वालों, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352-65-65-60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

0: klaar met nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम
2: हॉलैंड। आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd. Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-2-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-2-65-65-60. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

0: Churakedu mera guria chili. Deze keer is dit liedje gezongen door Benny De Jaal, en Mol Malik en Anu Malik. En kwam uit de film Hangama 2. Uit de film Ghail komt dan Pyarte moet zeker tiho, don't say no. Gezongen door Shabir Kumar.
1: Mijn tumse pyar nahi karti. Kripya aap rasta denge?
2: Please.
1: Thank you.
3: Varsha ji, keh do ki tum mujhse pyar karti ho.
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: मालिका शरारती है। वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देसी किरक सॉन्ग दो जुबेन नौटियाल आउट द फिल्म सनक। हाँ मतलब फैदर मैं शैलेंद्र सिंह मैथ आउट द फिल्म जमाने को दिखाना है। होगा तुमसे प्यारा कौन।

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jubin Nautiyal en Preetam komt het volgende liedje via Radio SBS in het programma Geet Onke Leher. Uit de film Tadap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

0: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया आवाज अवैध द फिल्म मुझे कुछ कहना है। दिल्ली दिस खजोहदोर कुमार सानू एंड प्रीति अवैध द फिल्म याद है कम तो फोहत लीजिए फिर रेडियो SBS। जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले। जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले खिले।

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। बेहतरीन गाना आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया है से। तो अब आप सुनिए फिल्म शुभ मंगल सावधान से अरिजीत सिंह की आवाज़ में राख।

लीना ओ लीना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म स्वर्ग नरक से। अगला गाना प्रोग्राम गीतम के लहर में है महबूबा महबूबा फिल्म अजनबी से।

सोना नहीं चांदी नहीं यार ना मिला, अरे प्यार कर ले, इस द फिल्म शुक मंगल सावधान एंड इज गेजंग डर बप्पी लहरी आयुष्मान खुराना एंड आंद्रा। गाँव द फेदर मैथ अव द फिल्म हम दिल दे चुके सिनम, हम दिल दे चुके सिनम, द टाइटल सॉन्ग दिस।

0: बंधन है, पायल ने मचाया शोर, वॉज आउट द फिल्म मोहब्बते. और बहुत लीजिए ओ का द फिल्म मोहब्बते, एंड इट इज आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट
2: जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

0: जाकर गढ़ लंका। हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है सोने दो, दिल कह रहा है कुछ होने दो।

निगम अलका याचिक और कोरस की आवाज़ में आपने सुना ताल पे जब ये जिंदगानी चले फिल्म रेफ्यूजी से। ये पहला फिल्म था अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, फिल्म हेलमेट से। गोल्ड बॉय और शिप्रा गोयल की आवाज़ में आप सुनिए बर्बाद।

रहना है तेरे दिल में, बस आउट द फिल्म मुझे कुछ कहना है, एंड आउट द फिल्म काबिल कॉम्प काबिल हूँ मैं, खुजों दो जुबेर नौटियाल एंड पलक मुच्चल।

ये नयन धीरे धीरे आपने सुना हेमंत दा की आवाज में फिल्म कोहरा से। और अब आप सुनिए प्रोग्राम गीतों के लहर में अगला गाना फिल्म खामोशी से। वो शाम कुछ अजीब थी।

आपने सुना फिल्म पागलपंती से, और अब आप सुनिए अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। अलका याचने की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, अली असमत की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, मौला मौला।

तुझ में क्या है दीवाने, खसांद और किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर कुम आउट द फिल्म बड़े दिल वाले। हाउ द फेदर मैट आउट द फिल्म मलंग हमरा इज इट लीचे।

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले बरी, लौंडे आगे कहीं टेकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं आ।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे। बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। बादशाह।

वासुदेव द फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं, छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। इसका संगदोर उदित नारायण एंड अलका याचनिक। इन प्रोग्राम गीतों के लहर से फोहत लीजिए बंधु मेरा द फिल्म जवान जाने बन।

आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये बेहतरीन गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ पे फिल्म अनपढ़ से, और अब आप सुनिए फिल्म देवदास से उदित नारायण की आवाज़ में वो चांद जैसी लड़की।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ